FM News Headlines. सत्त बज के दो मिनट ते तुसी सुनोगे बॉलीवुड पॉलीवुड दे किस्से कहानियां बहुत सारियां गल्लां बातां फिल्मी दुनिया दियां प्रोग्राम होएगा फिल्मी दुनिया 8 बजे सुनोगे FM News Headlines 8 बज के दो मिनट ते रंगला पंजाब प्रोग्राम 9 बजे सुनोगे FM News Headlines रात 9 बज के दो मिनट ते फरमाइशा पूरियां होनगियां हिंदी फिल्मी गीतां दिया प्रोग्राम दिल चाहता है जरा ही रात 10 बजे सुनोगे शामी गजल प्रोग्राम साढ़े 10 बजे एक प्यार का नगमा है दोस्तों ये सन साढ़े आज रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा सवेरे दे 6:05 हो रहे ने आओ सर्वन करदे आ भक्ति संगीत दा प्रोग्राम वंदना

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अपनी एक छोटी जी रचना लेके आ रही हैं जी। सो आप कबूल करियो जी मेरी इस रचना नू, ते बहुत वधिया लगदा जी FM रेनबो सुन के, आनंद आ जांदा प्रोग्राम जदों सुनीदा वा जी। कोशिश करिया करूंगी जी रोज हाजरी लवा सका।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: क्योंकि इधर कनेडा विच रात दा समा हुंदा, इस करके कई बारी हाजरी नहीं लवा हुंदी, पर सुनन दी जरूर कोशिश करदी आं जी। ते इक रचना दी हाजरी लवा रही आं जी। अपने आप दा रख तू ख्याल अड़िए, खुद नू कर तू सवाल अड़िए। क्यों आई इस जग अंदर, इस गल दी भी कर विचार अड़िए। क्यों मिलिया है तेनू मनुखा जन्म, सोच जरा किमें करनी इस दी संभाल तू अड़िए। अपने आप दा रख तू ख्याल भी अड़िए। एवें अजाई गवा लिया वक्त जो, की फायदा फिर होवेंगी बेहाल तू। हां सच दो पैर बेशक घट तुर ली, पर तुरी हमेशा मड़क दे नाल तू अड़िए। पूरी अणख दे नाल अपने तू करम निभाई, एदा धर्म ता आपे ही कमा लवेंगी। बस रखी नाल अपने हमेशा इंसानियत नू तू, हाय सच्ची धर्म ता आपे ही तू कमा लवेंगी। रखी नाल अपने हमेशा इंसानियत नू, आया सफल हो जावेगा जग ते तेरा। जीवन अड़िए जे सच ते सही नू, बना अपनी चाल लमी तू। अपने आप दा रख ख्याल नी अड़िए, अपने आप दा रख ख्याल नी अड़िए। बहुत ही धन्यवाद जी।
1: थैंक यू सो मच जी। और इन्नी दूरों तुसी अपना ये प्यार भेजे, अपने शब्दों के राही सानू प्यार भेजे, मैं कि साडा दिल तो वैसे ही खुश हो गया। और सानू मैसेज जोड़ा आया सी दविंदर कौर जी, उन्होंने मैसेज पहली बारी मैसेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मैं कह जी वेलकम है जी, वेलकम साढ़े प्रोग्राम के। और जिमें कि तुम कह कि टाइम का थोड़ा हैगा, उधर इस टाइम तो रात का टाइम हों, पर देखो टाइम कट के थोड़ा जो टाइम कट के तुम मैसेज कर ही दिया करो, कोई गल नहीं, असी मैसेज करना अपने प्रोग्राम के शामिल, और तुम प्रोग्राम का हिस्सा बने, सानू इस चीज़ से ज़्यादा खुशी है। और कमरे में अपने आप नूं ताड़ के, शरीर गर्मी दे विच साड़ के, टीवी पक्खा ते मोबाइल साढ़े बन गए ने वड्डे वैल, रब ने एसी चलाए ने, सरमे ठंडे बुल्ले पहाड़ां तो आए ने। जसविंदर शर्मा जी दा सानू आया जी ये मैसेज, और थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजण दे लई। जसविंदर शर्मा पिंड जय सिंह वाला बठिंडा तो सानू ये मैसेज पाया जी इन्होंने। बाकी वक्री टेक्नोलॉजी की गल हुई है भाई, बदलती हुई टेक्नोलॉजी की अज गल होनी है कि आखिरकार ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी जी है ना, ये थोनों किस तरह नवी चीज़ा सीखने का एक मौका दिंदी है, पर नाल दी नाल जिहड़ा है थोनों भी होर थोड़े शरीर नूं होर भी वधिया करन दे विच भी मदद जिहड़ी है ये करती है। और एक नवी यूनिवर्सिटी के भी रिसर्च हुई है, उसके बारे भी थोन दसागी। पर देखो साढ़े लिसनर दोस्त ने शुरुआत अपने मैसेज की कीती सी प्यार दे भुलेखे, मैं कह जी इस गीत दे नाल ही कर देने आज ही अज इस प्रोग्राम दे विच थोनू भी इंजॉय करन दे लई मजबूर कर देने। प्रोग्राम चल रहा जी, थोड़ा अपना दिल अपना पंजाबी, थोड़ी अपनी आज ही अंजलि दे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: प्रोग्राम चल रहा है जी, थोड़ा अपना दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम, थोड़ी अपनी आरजी अंजली दे नाल। और मैसेजेस आ रहे ने इस प्रोग्राम दे विच, बहुत सारे लिसनर दोस्त मैसेज भेज रहे ने। अगला मैसेज केड़ा आया, आज पहला सुनते हैं।
4: हेलो दोस्तों, दिल अपना पंजाबी में जी एस मुल्तानी। दोस्तों हजारा जी एक लाइन दो लाइना लैके छोटे दी मैडम जी, थोड़ी सारी टीम प्यार भरी सासी।

एंजॉय करो जी। 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो गया है जी। गीत बहार विच मैं हाँ तुहाडे नाल तुहाडी दोस्त आजे निवेदिता। वेल दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार दे विच बहुत सारे गीत, बहुत सारिया गल्लां बातां असी करांगे ते गीतां दी फुहार दे नाल प्रोग्राम नू बनाया जाएगा एंटरटेनिंग ते इनफॉर्मेशन दी डोज भी पूरी रहेगी। सो तुसी जाना किते भी नहीं है, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल ते इंजॉय करते रहना प्रोग्राम गीत बहार। ते फिलहाल प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह दे इस गीत दे नाल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेज।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

हो, गलबात कर सकते हो, कोई किस्सा कोई कहानी कुछ साझा करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो अपनी फरमाइश का गीत भी तुसी प्ले करवा सकते हो। सो देर किस गल दी, फटाफट फोन उठाओ ते कॉल करनी शुरू करो, क्योंकि मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ। सो 2342174 नंबर डायल करना है जी, तो तुसी पहुँच जाओगे रेनबो स्टूडियो दे विच, जिथे थोड़ी गलबात होएगी मेरे यानी निवेदिता दे नाल, ते जो गीत तुसी फरमाइश करोगे वो असी जरूर प्ले करांगे। हेलो जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत होएगा मेरी पसंद का, तो उस तो बाद वाले गीत होंगे तुहाडे पसंद दे। ते प्रोग्राम की शुरुआत गुरनाम भुल्लर दे इस गीत दे नाल।

0: ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच मैं हाँ निवेदिता थोड़े नाल। वेल दोस्तों सानू पता है कि मौसमी फल सब्जियां जड़े होंदे ने ना किन्ने इंपॉर्टेंट है। असी अक्सर अपने वड्डे तो अपने घर दे तो सुनिया होना है कि मौसमी फल सब्जियां जरूर खाने चाहिए ने, क्योंकि कुदरत सानू मौसम दे अकॉर्डिंग जड़े फल सब्जियां दिंदी है ना वह किसी भी औषधि तो घट नहीं होंदे। जेकर हुण गल करिए गर्मियां दी ते अजकल खरबूजे तरबूज दी भरमार हो जाती है ते हर घर विच खरबूजे तरबूज आउंदे ने ते असी सारे खांदे भी हाँ, पर सानू कई बार ये नहीं पता हुंदा कि जड़ा फ्रूट या जड़ी वेजिटेबल जड़ी सब्जी असी खा रहे हाँ ये सानू किस तरह फायदा दे रही है, किन्नी लाहेवंद है। सो खरबूजा साडे लई किदां लाहेवंद है इहदे बारे अज असीं गल्लबात करांगे कि किदां साडे शरीर नूं खरबूजा किन्ने ही फायदे प्रदान करदा है। खरबूजा शरीर नूं ठंडक दिंदा दोस्तों, गर्मी तों बचाउंदा, क्योंकि इहदे विच पानी दी मात्रा बहुत ज़्यादा हुंदी है, सो शरीर नूं हाइड्रेट रखण दे विच हैल्प मिलदी है। इस तों इलावा खरबूजा विटामिन सी नाल भरपूर हुंदा है, सो इम्यूनिटी वधदी है, रोग प्रतिरोधक जिहड़ी साडी शक्ति है उह वधदी है। और तुहानू पता है कि इहदे विच फाइबर ज़्यादा है, इसलिए साडा डाइजेशन सिस्टम है जिहड़ा उहनू इंप्रूव करदी है, पाचन प्रणाली साडी मजबूत हुंदी है ते कब्ज़ तों राहत मिलदी है। खरबूजा साडी अखां दी रोशनी दे लई भी लाभकारी मन्निया जांदा है, क्योंकि इहदे विच विटामिन ए भी हुंदा है। यही नहीं ये साडी चमड़ी नूं भी निखारदा है जी, चमड़ी नूं ताजगी ते निखार देण दे विच हैल्प करदा है। इस तों इलावा हार्ट दे मरीजां लई खरबूजा बहुत वधिया, दिल दी सेहत लई चंगा है ते ब्लड प्रेशर नूं भी संतुलित रखदा है। इत्थे ही इहदे फायदियां दी लड़ी है जिहड़ी खत्म नहीं हुंदी। इहदे विच कैलोरी घट है, इसलिए वजन घटाउण वालियां लई भी फायदेमंद है ते गुर्दियां दी सफाई दे विच भी मदद करदा है खरबूजा। सो इस तों इलावा सानू ऊर्जा भी प्रदान करदा है, सानू थकावट लगदी होवे ते खरबूजा खाओ तुहानू ताजगी लगन लगदी है, शरीर विच ताकत आ जांदी है। खरबूजे दे जिहड़े बीज है वह भी बहुत पौष्टिक हुंदे है ते शरीर नू ताकत दिंदे है। गर्मी दे विच हीट स्ट्रोक तो बचा दे लई ये फल ये फ्रूट बहुत ही वधिया है। सो मैं तुहानू दस दित्ते इहदे इन्ने फायदे ने, एंडलैस इहदे बेनीफिट्स हैगे ने ते सानू खरबूजा खाण तो हिचकिचाना नहीं चाहीदा, क्योंकि गर्मियां दी ये सौगात है। ते होर गर्मियां दियां सौगातां कीड़ियां ने जी उहदे बारे भी असीं गल करांगे, पर उस दे लई तुहानू बने रहना पएगा साडे नाल ते पहलां इंजॉय करांगे एक गीत, उस तों बाद वापस आओगे ते फिर मैं किसी होर गर्मियां दी सौगात दी गल भी जरूर करांगी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त

एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम मीठे मेलोडीज़। उम्मीद है कि आज का सुरीला सफ़र तुहानू यादां दे उस दौर विच लै गया होएगा जिथे चिट्ठियां विच प्यार वसदा सी ते पैगामां दे विच अपनापन। ते इस दे नाल ही तुहाडी होस्ट मैं निवेदिता लैनी है इजाज़त इस प्रोग्राम नू इत्थे ही वाइंड अप करन दी, पर जांदे जांदे एक गीत अजे होर तुहाडे लई प्ले करना है ते कुछ ही पलां दे बाद होएगा अगला प्रोग्राम ते अगले आरजी तुहाडे नाल अगले सफ़र दी शुरुआत करनगे। इस दे नाल ही मैनू दिओ इजाज़त। बाय बाय, गुड बाय।

पल पर मौत का एहसास है मोहब्बत, फिर भी दिल को खास है मोहब्बत। देखो जी, मोहब्बत ते रिलेटेड ही जिहड़ी तुसीं शायरी सानूं भेजनी है, जिहड़ी ए वन लाइनर कोई इदां दी जिहड़ी लाइन हैगी है वाइल वन लाइनर शायरी, ओह तुसीं सानूं नहीं भेजनी। शायरी दा मतलब है घट्टो घट्ट चार कु लाइनां होण, जिवें जिवें असीं उसनूं पढ़दे हाँ सानूं पता लगे कि हाँ अगला जिहड़ा बंदा हैगा है वह कहना की चाहुंदा है शायराना अंदाज़ दे विच अपनी शायरी दे विच।

काश थोड़ा प्यार जता दूं क्या, कि आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या। तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, कि तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय मेरी जान गवा दूं क्या। मेरा कमरा बहुत उदास है, कि मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या। तुम्हें लिखने में दिन चला जाएगा, कि तुम्हें लिखने में दिन चला जाएगा, तुम्हें सोचने में रात बिता दूं क्या। दूसरी ट्यून की तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम चल रहे हैं जी, दिल आज शायर है। एंजॉय तुसी कर रहे हो अपनी दोस्त आरजी शाहीन दे नाल। सानू एक मैसेज आया है जी, डेविड समीर, कोमल, राजीव, राघव, नैन्सी, गुड ईवनिंग। पहला तो जनाब लिख रहे ने गुड ईवनिंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। पूरी फैमिली का नाम इन्होंने मैनशन किया है, तो लास्ट द फिरोजपुर तो ये सानू मैसेज आया है। लास्ट के इन्होंने लिखा एनी सोंग, डेविड जी, समीर जी, कोमल, राजीव, राघव, नैन्सी, जो भी इन्हां विचों साडा प्रोग्राम सुन रहे ने, दलाज शायर है, तो साडे प्रोग्राम दे विच तुसी सानू शायरी भेज सकते हो, तुहाडी जिहड़ी शायरी हैगी उह आपां शामिल करदे हां। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फरमाइशी प्रोग्राम हाँ तुसी 4 बजे तो 5 बजे तक हैलो जलंधर जिहड़ा है फरमाइशी प्लस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, उहदे विच तुसी सानू मैसेज करियो। फिलहाल जे तुसीं सानूं कोई शायरी भेजना चाहुंदे हो साडे इस प्रोग्राम दे विच, तां लओ जी, मोस्ट वेलकम है, फटाफट सानूं शायरी भेज दो प्रोग्राम दे विच। अगला सानूं आया है जी लोहा बाजार मलेरकोटला, राकेश कुमार लिखदे ने, हर किसी नूं अपना दर्द सुनाउणा छड्ड दित्ता। बड़े दर्द दे नाल इन्हां ने सानूं मैसेज कीता, हर किसी नूं अपना दर्द सुनाउणा छड्ड दित्ता, असीं हुण लोकां ते उम्मीद लगाउणा छड्ड दित्ता, जदों सानूं पता लगेगा साडे रोण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा तां असीं उहनां कोल रोणा छड्ड दित्ता। हाय क्यों इन्ना उदास रहिंदे हो तुसीं, क्यों इन्ने उदास रहिंदे हो। मैं कहिंदी आ कि

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हीट इमरजेंसीज। इस प्रचंड गर्मी में कैसे करें खुद का बचाव, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आप नंबर डायल करिए और इधर मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद बहुत
1: जी। सर आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि हीट इमरजेंसीज या गर्मी से संबंधित आपात स्थिति क्या होती है।
2: इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी छोटी मोटी घमौरियों से लेके या पैरों में सूजन से लेकर के
1: जी।
2: एक जो हीट स्ट्रोक तक ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हीट रिलेटेड इमरजेंसीज आ सकती हैं, लेकिन छोटी मोटी जो गमोरियाँ होती हैं उसमें तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है ये काफ़ी ही संगीन है और इसमें मोर्टेलिटी 50-70% तक हो सकती है इलाज मिलने के बावजूद।
1: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि संगीन, ये शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पे बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जुड़ जाती हैं। आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक।
3: Hey!

0: सर, ये हिदायत तो हमने सुन ली और बाकी हिदायतें अब आपसे लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून
0: जी। गुड आफ्टरनून सर, नाम बताएं अपना।
1: आई एम कुंवर सिंह फ्रॉम दिल्ली।
0: जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताएं अपना।
1: सर, आई वांट टू नो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एज दिल्ली इट इज इन पीक टाइम नाउअडेज, व्हाट होमली प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक। सेकंडली, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंपरेचर व्हिच ए ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट।
2: थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो यह है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ ये मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी घफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं और वो कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106, 107, 108, 109 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर साथ में गफलियत में और अनाप शनाप बकना और प्री कोमा या कोमा में होना या फिर बेहोश होना और या फिर दौरे पड़ना, ये सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। तो ज़्यादातर ऐसे समय पे ये डायग्नोसिस बनता है जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव की स्थिति में, ऐसे गर्मी के वो मौसम में बनाया जाता है ये हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस। और इसमें बचाव के जो ये है कि

0: सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर, जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, छाती जो छतरी होती है वो ले सकते हैं आप, और साथ में कुछ पानी ORS या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए, अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकलिए, और ज़्यादा कम से कम समय में अपना काम करके छाँव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर इसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग, जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या पुलिसकर्मी हैं, ये लोग को विवश होते हैं इनको, तो ये लोग भी छाए में ज़्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें, और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें। और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज़ कपड़े पहने, टाइट कर सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक कि बॉडी का सवाल है, एक्लेमेटाइज़ धीरे धीरे होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम भी होती है। तो अगर आप जैसे मान लो कहीं से ठंड इलाके से एकदम से गर्मी वाले इलाके में आते हैं, तो आप एक्लेमेटाइज नहीं हैं, आपका शरीर जो है वो तैयार नहीं है हीट को सहने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो झेल नहीं पाता है, हीट स्ट्रोक ऐसे लोगों को बहुत होता है। मान लो जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, और फिर आप 2 हफ्ते वहाँ या 3 हफ्ते वहाँ से वापस आते हैं, तो अगेन आप डी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, यानी कि आप जो पहले एक्लेमेटाइज हो रहे थे हीट को सहने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति डी एक्लेमेटाइज होता है, फिर वापस आता है, तो हीट में उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने हीट वेव की चर्चा की थी, क्या किस तरह से माना जाता है कि ये हीट वेव है?
0: हाँ, देखिए अलग अलग इसके वो हैं प्रमाण होते हैं, जैसे कि प्लेन की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तापमान, ड्राई टेम्परेचर जो है, और 2 दिन तक लगातार रहता है और 2 स्टेशंस में मेजर होता है, तो इसको हम घोषणा कर देते हैं हीट स्ट्रोक, हीट वेव है
1: जी।
0: और सिवियर हीट वेव होता है जब 47 से ज़्यादा लगातार 2 दिन तक 2 स्टेशंस में हम मेजर करते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये, और या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब 4.5 से 6.4 तक, अगर वो ज़्यादा है
1: जी,
0: इससे ज़्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है, टेम्परेचर डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है
1: जी। अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
0: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं या कोई और सिम्टम शो करते हैं, तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है वो, बोलने की स्थिति में है कि नहीं है, या बिल्कुल ही बेहोश है, ऐसे में पैर ऊपर कर दें थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर वो होश में है, बातचीत कर रहे हैं, तो पानी दें उनको पीने के लिए, अगर ORS है तो ORS दे दीजिए, नहीं तो वैसे पानी दे सकते हैं, अगर बेहोश हैं तो फिर पानी देने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको पानी डालें, छिड़काव करें, या गीला कपड़ा, हाँ गीला नहीं नहीं पूरे बॉडी पे
1: जी
0: आप डाल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, छाती पे भी, और पेट पे भी डाल सकते हैं, फेस पे भी डाल सकते हैं, और पंखा करें खूब
1: जी,
0: है ना, काफ़ी उससे पंखा करें, तो ताकि टेम्परेचर कम कर सकें, और उसको जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, गफलियत में जा रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एकदम से हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी हो जाता
1: है जी। डॉक्टर साहब, आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताएं सर क्या सवाल है?
2: मेरा
1: आपका
2: कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे दिल्ली NCR में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में
1: जी,
2: सड़क पर जो शरबत पानी की व्यवस्था की जाती है और उसमें बड़ी मात्रा में शुगर डालते हैं
1: जी,
2: और कलर भी डालते हैं, तो

0: मेरा पूछना है कि और वो बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पीजिए, तो मेरा पूछना है कि क्या वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, कैसे पता लगना है?
1: जी धन्यवाद। ये हाइजीनिक है नहीं हाइजीनिक है ये तो उसकी जांच करके ही पता लगेगा। बाकी ये अगर वो कलर्स डाल रहे हैं और उस और तरह की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ठंडाई तो दूध में भी बनाते हैं, दूध में पानी मिला के, अगर पानी साफ़ सुथरा है तो पिया जा सकता है, काफ़ी लोग पीते भी हैं उसको और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है लोगों को। तो ये तो एक सेवा भाव से किया जाता है और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छे वो लोग जो होते हैं इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी वो नहीं रहता कि भाई किसी को दिक्कत आए ऐसे।
2: हाँ, अगर कोई संशय है तो साथ में लेकर चलें, आपने बताया ये है कि चीज़ें साथ में रखें और बाकी क्या प्रिकॉशंस हैं आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदूत पर सौलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से लिख रहे हैं, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल होता तो और भी अच्छा लगता, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया हुआ है ये है तपोष प्रमाणिक जी पथूरिया बोंगा पश्चिम बंगाल से। Does holding onions in your hand reduce the chance of heat stroke? इनका सवाल है।
1: नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर उसको आप हाथ में रखेंगे, या कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं अनियन को या प्याज को, तो आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये गलत धारणा है। बल्कि आप अगर पानी पियेंगे और तरल पदार्थ लेंगे और अल्कोहल और अदर बेवरेजेस, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं वो कम लेंगे, टी कॉफ़ी कम लेंगे, और जैसे हम अभी नारियल पानी की गाना चल रहा था,
2: हाँ,
1: नारियल पानी या छाछ है, ठंडाई है, या ORS घोल के भी आप, या सिर्फ सिंपल पानी ही और नमक डाल के उसमें नींबू डाल के मिला के आप अपना घर में भी एक नींबू पानी बना सकते हैं, लेमनेड। तो ये चीज़ कैरी करेंगे तो आपको क्योंकि पसीने में सोडियम सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्ट और वाटर का सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर धूप में निकल रहे हैं तो कुछ खा कर ही निकलें, ऐसा भी सच है?
1: हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है, धूप में एकदम से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके बॉडी की एनर्जी वो तोड़ने लग जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी कि शुगर आपका ब्लड में बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर कुछ खा के चलेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी, आपके बॉडी को एनर्जी मिलता रहेगा आपके खाने से, नहीं तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको दिक्कत हो सकती है।
2: जी, तो बहुत सारी हिदायतें हैं हमारे पास और लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, हालांकि हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं। रेडियो डॉक्टर के संचालनकर्ता एवं चिकित्सक जी को मेरा प्रणाम। कृपया गर्मी के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए एवं किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करें। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट जी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से।
1: जी अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमें लिक्विड की बात है, उसमें हमें खास करके अपने जो नॉन बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी कोला, ये सब जो होते हैं कोका कोला या फेंटा और ये सब की, या फिर अल्कोहल हो गया है ना, इनकी सेवन कम करना चाहिए, बियर हो गया। तो इसके अलावा जैसे कि आप आजकल जगह जगह पे आप देखते हैं वाटरमेलन के फ्रूट्स भी मिलते हैं, या फिर खीरा काट के लोग बेचते हैं, वो सब भी आप, जैसे उसमें भी काफ़ी पानी होता है और काफ़ी ठंडा होता है, और पानी भी पीते रहें, ORS पीते रहें, ये सब आप करेंगे तो टी कॉफ़ी आपको कम करना पड़ेगा ऐसे गर्मी के मौसम में।
2: जी। अगला सवाल हमारे पास है सरू

0: मल्होत्रा जी का साकेत मेरठ से लिख रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते, वहाँ गर्मी होती है, उनको कैसे बचाएं? स्कूल से आते हैं तो बहुत घबराए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
1: जी देखिए, स्कूल में भी डायरेक्शंस जाते हैं, स्कूल्स में भी एवरी या तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठा सकती है वहाँ स्कूलों में कि बच्चों को हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक दिया जाए, सबको बोला जाए कि पानी पीना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, थर्स्टी होते हैं तभी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं तभी पानी पीते हैं, नियमित तौर से पानी नहीं पीते हैं। तो एक वो चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं आप, जैसे वाटर मेलन हैं या कुकुम्बर हैं या और अन्य जो फ्रूट्स जिसमें वाटर होता है, वो वाले आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। एक फ्रूट ब्रेक और वाटर ब्रेक का जो एक गर्मी में मेरे ख्याल से हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक तो लेना ही चाहिए।
0: जी
1: तो ऐसे चीज़ें करके गर्मी के प्रकोप से आप बच सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे और भी होनी बाकी हैं, लगातार हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कौन सा गीत सुनवाया जाए? गेंदा फूल सुनवा दिया जाए,
1: गेंदा
0: आपकी
1: फूल,
0: पसंद का?
1: हाँ
0: जी

जी हाँ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं बहुत ही विशेष चर्चा। गर्मी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो विषय है वो है हीट इमरजेंसीज, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। और आज लगातार आपको हिदायत दी जा रही है कि कैसे गर्मी में आप सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खान पान कैसा हो, बच्चों के बारे में हमने चर्चा की, खासकर ये

0: देखा जाता है कि जब कोई गर्मी से घर के अंदर आता है तो तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। तो क्या सही होता है, चाय कॉफ़ी का सेवन किया जाए या ठंडी चीज़ें ली जा सकती हैं?
1: जी, एकदम से गर्मी से आके एकदम से बिल्कुल ठंडा चिल्ड कोल्ड और आइस वाला ड्रिंक इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गला ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और ख़ास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज़ नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन उसमें काफ़ी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज़ नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया।

0: गला ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और ख़ास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन उसमें काफ़ी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया, नींबू पानी है, या फिर अभी नारियल का पानी की बात हो रही थी, तो ये सारे जो रूह अफज़ा भी लोग पीते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना हो, और जैसे कि ये कॉफ़ी और चाय या फिर अल्कोहल, इनसे भी बचना चाहिए, खास करके गर्मी में, ताकि क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा बनता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
1: होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा ये बच के रहना है। श्रोता हूँ आपको, हमारे अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं सर।
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब?
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: सर मुझे पूछना ये है कि जो ये ORS होता है, जो BP के मरीज या शुगर के मरीज हैं वो इसको ले सकते हैं?
0: हाँ जी, ले सकते हैं इसको। ORS जो है इसमें, क्योंकि गर्मी में खास कर क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, साथ में सॉल्ट भी लॉस हो रहा है आपके पसीनों में, तो ये ORS जो होता है ये आप ले सकते हैं एज अ, लेकिन जो खास करके जो जिनको हार्ट की बीमारी है, या फिर कुछ लोग जिनको बोला गया कि भाई सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, ऑल्दो इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट तो होता ही है, और शुगर होता है इसमें, और वाटर होता है, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। खास करके कुछ एल्डरली होते हैं जो सॉल्ट का जो ऊपर नीचे से उनको दिमाग में गफलियत में जाने लग जाते हैं, तो उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये लेने में कोई इशू नहीं है। ORS आप ले सकते हैं, और घर में भी आप ORS बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर में आपने चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल के नमक, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो इस तरह से भी आप, या फिर नींबू पानी भी आजकल लोग पीते हैं, छाछ पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, या नारियल पानी, ये इस तरह के जो सेवन है आप इसको भी कर सकते हैं ORS की जगह।
1: जी डॉक्टर साहब, किन किन लोगों को हाई रिस्क हो सकता है इस मौसम में?
0: हाई रिस्क में देखिए, सबसे छोटे बच्चे हैं, या एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, और फिर उनको वहाँ पे वर्जिश, वो मतलब उनका काम ऐसा है कि उनको कसरत मतलब, या फिर उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं, या फिर जो वेंडर्स हैं, या फिर जो लेबरर्स क्लास हैं, या पुलिसकर्मी भी आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी गर्मी में उनको ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो ये लोग काफ़ी इनको चांसेस हाई रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, बेघर होते हैं, ये लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं। और एल्डरली की बात करें तो एल्डरली तो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर में हैं, तो भी उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिंस ले रहे होते हैं जिससे वैसे ही डिहाइड्रेशन में होते हैं, और थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनको दिक्कत आ सकती है, खास करके जो एल्डरली हैं, जो खुद नहीं चल सकते, पानी नहीं ले सकते, या बेड रिडन हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि इनको किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं सकते उनका डिहाइड्रेशन क्या, उनको कब प्यास लग रही है, या उनको डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, वो सब वो अपना जो है वो बता नहीं पाते, तो ऐसे में वो भी बड़ी जल्दी ही उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा डिक्रीज होते ही, या कभी लूज मोशन वॉमिटिंग हो गया
1: जी,
0: तो ऐसे में तुरंत वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं
1: जी। तो बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है, जिसको डॉक्टर साहब आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है सतीश कुमार जी का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी में हमको कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके?
0: देखिए ड्राई फ्रूट्स तो कभी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको इनफ वाटर ले रहे हैं ताकि वो, और ज़्यादा चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है।

0: नियमित तौर से आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, आपके रूटीन में बना हुआ है, तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको डाइजेशन के लिए उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसको वाटर लें, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में पानी का ख्याल रखें
1: जी। अगला सवाल मैसेज के रूप में हमारे पास है संजय एम जोशी जी का, पुणे से लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप सेफ मोबाइल इन हीट वेव्स कंडीशन एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग हॉट।
0: जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम चालू रखते हैं अपने फ़ोन में, और ये अच्छा कि आपको फ़ोन हेल्थ के बारे में भी आपको चिंता है। ऑफ़ कोर्स इस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, खास करके एसी, आप देखेंगे एसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, फायर के इंसिडेंट्स आते हैं कि एसी में आग लग गया, क्योंकि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और अंदर वो कूल कर रहा है, और तो ऐसे में उसकी जो तार है, वायर्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ़ोन भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या जैसे मान लो डैशबोर्ड पे रख दिया, आपने कार चला रहे हैं, डैशबोर्ड पे रख दिया, डैशबोर्ड पे धूप आ रही है सीधा, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सबसे यह है कि आप उसको कूल रखें, ठंडे छाँव में रखें, तो वो गर्म, और ज़्यादा यूज़ करने से भी वो गर्म होते हैं, तो एप्लीकेशन सारे बंद कर दें जैसे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फ़ोन अपने आप ही विदाउट यूज़, तो फिर उसको दिखाना की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी से रिलेटेड।
1: जी, हालांकि देखिए ये थोड़ा सा विषय से हटकर था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, क्योंकि ये तो आपने मोबाइल की जो सुरक्षा थी वो पूछ ली है, और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मोबाइल की भी सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो कि आपने सवाल किया और जागरूक किया है हमारे श्रोताओं को भी। बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं मैसेजेस, वो लिख रहे हैं हमारे श्रोता के कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं के कॉम्प्लिकेशंस हैं हीट की वजह से, अगर वो देर से होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए।
0: जी, कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये मैंने बताया एक कॉन्टिन्यूम है ये, अगर आप इसको अर्ली पहचान लेंगे तो अर्ली इलाज हो जाएगा। अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं या आप इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर ये भयावक रूप ले लेते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में ही सीधा प्रेजेंट होगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मान लो किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं हीट में, काफ़ी लोगों को ना नसें चढ़ जाती हैं, जैसे मसल्स में, जैसे आर्म्स में या लेग्स में, एकदम से बैठे बैठे या चलते हुए या थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो मसल क्रैम्प हो गया, जिसको हम नस चढ़ना भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी कि आपका बॉडी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये पहचानना ज़रूरी है। फिर यूरिन का जैसे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। जब भी आप यूरिन जाएं तो ज़रूर अपना कलर देखें यूरिन का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे कि आपको, और उसके तुरंत बाद यूरिन करके आएं तो ज़रूर पानी पिए अगर वो डार्क है ना। या एक आजकल क्या है, एक और होता है कि ग्लास, जो ठंड में जो ग्लास रखते हैं वो छोटा रखते हैं या वो नॉर्मल होता है, लेकिन गर्मी में वो बड़ा ग्लास रखें, ताकि जब भी आप पानी पिए तो कम से कम डेढ़ ग्लास या दो ग्लास पानी पिए, तो एक बार में आपका
1: क्वांटिटी भी सर कुछ होनी ज़रूरी है कि एक लीटर पिए या दो लीटर पिए, या कुछ रोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि जिनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो ऐसे लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी।
0: हाँ, देखिए जो जिनको पानी बोला जाता है, जैसे किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको सूजन पहले से ही है, हाँ, है ना, उनको सॉल्ट का भी, उनको सॉल्ट भी बोलते हैं कि सॉल्ट भी उनको कम लेना है, और उनको बोला जाता है कि एक लीटर ही आपको पानी लेना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि आपको इनसेंसिबल लॉसेस भी, आपके इनसेंसिबल लॉसेस मतलब जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, तो आपके जो सांस आप देखेंगे तो गर्म होता है सांस, तो उसमें भी आपके लॉसेस होते हैं, यूरिन में लॉस होता है, आपके स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, तो ये बढ़ जाता है गर्मी में। तो ऐसे में एक लीटर के बजाय वो उसको डेढ़ लीटर माना जाता है, डेढ़ या दो लीटर भी माना जाएगा। तो ऐसे में लोग जो हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अभी गर्मी है, जैसे मैं ठंड में तो एक लीटर से कम ले रहा था, लेकिन अभी गर्मी है, क्या मुझे एक लीटर से कम ही लेना है या दो लीटर तक मैं पानी ले

0: तो ये अपने डॉक्टर से सलाह
1: परामर्श ले
0: परामर्श
1: सकते
0: करके
1: हैं जी। डॉक्टर साहब, गर्मी जनित रोगों से और किस तरह की समस्या शरीर में हो सकती है? जैसे अगर गर्मी लग जाती है तो मतलब बाकी और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या उससे?
0: जी देखिए, मैंने बताया ना, ये जो है पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है जो गर्मी है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे बात करें तो ब्रेन को इफेक्ट करता है ये, क्योंकि जो है जो आपका जो सोचने की क्षमता है, फिर इसमें मैंने बताया कि कोमा में चला जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेट में जैसे नौजिया वॉमिटिंग या उल्टियाँ आने लग जाती है, हार्ट में भी समस्या आ सकती है जैसे कि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा या एबनॉर्मल वे में जो रेगुलर बीट है वो रेगुलर बीट ना होकर इरेगुलर बीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी असर होता है, तो किडनी भी आपके शट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सोडियम का ऊपर नीचे होता है, ग्लूकोज आपका नीचे चला जाता है, तो इस तरह से फिर मांसपेशियों में जो होता है जकड़न होती है, ऐंठन हो जाती है, नस चढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको जो पूरे बॉडी में जो सेल्स
1: कभी कभी सर ये भी देखा जाता है कि सर्दी भी लोगों को लगने लगती है, जब उनको लू लग जाती है तो उसकी वजह से ये भी समस्या होती है, तो ये कैसे बचा जाए इन चीज़ों से?
0: जब अगर कंपन होने लग जाए आपको, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉडी और हीट बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये तब होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो लू लगते हैं उसको हम क्या करते हैं कि टब में, हॉस्पिटल में एक टब होता है, उसमें हम ठंडा पानी 0-5 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको आइस वाटर बाथ देते हैं
1: जी।
0: ताकि टेम्परेचर जो इनका जनरली 106-108 जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको तुरंत हम 102 तक ला सकें, जो कि हाफ एन आवर में हमें लेके आना होता है
1: जी।
0: तो ऐसे में अगर जैसे टेम्परेचर एकदम से नीचे ला रहे हैं तो उनको ठंड लगने की यानी कंपन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम एक दवा देते हैं, इंजेक्शन होता है मिडाजोलम, वो हम देते हैं और ताकि उसका कंपन दूर हो जाए, और फिर हम उसको जैसे ही 102 तक आता है टेम्परेचर उसको हम टब से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसको नॉर्मल एयर ड्राई या स्प्रिंकलिंग और एयर ड्राई से हम उसको धीरे धीरे हम पहले हम तेज़ी से लाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई वगैरह हैं वो कंबल ओढ़ के भी गर्मी में इसलिए काम करते हैं कि उनको हीट वेव्स का असर ना हो, तो क्या कहीं ये ऐसा पहनावा ज़रूरी है कि अगर थोड़े भारी कपड़े पहने, जैसे कि हमने आपसे सुना कि हल्के कपड़े पहने, तो वो क्या रीज़न होता है?
0: देखिए, कभी भी डार्क गहरे रंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कंबल तो खैर आपका जो इवेपोरेशन है वो नहीं होने देगा, तो आपको क्या होता है कि ये बेसिकली आपको इवेपोरेशन होना चाहिए, यानी कि जो हीट है जब उसमें क्या होता है, जो तापमान है आपके बॉडी का वो ठंडा तब होता है जब आपका जो भाप बनती है, आपका जो स्वेट है वो भाप बनता है, तो नीचे वो त्वचा को वो ठंडक पहुंचाता है। तो ऐसे कोई भी कपड़ा पहनेंगे जिससे कि बहुत थिक कपड़ा है या कंबल ओढ़ रखा है या कुछ ऐसा है, तो वो इवेपोरेशन आपका होगा नहीं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन से होता है और रेडिएशन से होता है हमारा, और कन्वेक्शन से भी होता है, जो एयर आती है ठंडा हमें लेके जाती है बॉडी का, और कंडक्शन से भी हीट लॉस होता है। तो ये चार मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो जो भाप बन के उड़ता है, जो हवा लगती है हमें उस पर, और जो जो रेडिएशन हीट का होता है, यानी कि वो अपने आप ही वो बाहर निकल रहा है हीट, तो ये सारे जो कंडीशन से ही हमारा, तो ऐसे कंडीशन कोई भी सिस्टम अगर कोई भी चीज़ जो इनको रुकावट पैदा करती है तो वो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देती है
1: जी। तो श्रोताओं, आज हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी से किस तरह की समस्या हो सकती है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, तो किस तरह की खास तौर पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और आप स्कूल गोइंग है तो भी आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ घंटे होते हैं जिनमें सावधान रहने की बड़ी ज़रूरत होती है, जो गर्मी का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है उससे बचें, डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बताया है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें, स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते, उसके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं, नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि हीट वेव्स का जो समय

0: होता है, जब डिक्लेयर हो जाता है, तो बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसे में पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर वो स्कूल गोइंग हैं, तो किस तरह का उनका खान पान हो कि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके निकलें, या बीच में कुछ सावधानी रखने के तौर पर कुछ वो एनर्जिक चीज़ें ले सकें, ऐसा कुछ बताएं।
1: हाँ जी, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि तरल पदार्थ आप लें और कभी भी बिना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, आजकल एक के बजाय दो वाटर बॉटल आप दे सकते हैं, या पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा वाटर बॉटल दे सकते हैं। और ख़ास करके अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन हैं तो वहाँ पर भी ये, वैसे भी उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता ही है कि बीच बीच में वो एक ऐसा वाटर ब्रेक करते हैं जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि पानी आपको कंपलसरी पीना है अपने उससे। और बच्चों को भी जब वो आएँ बच्चे वापस, तो देखें कि कितना पानी पिया है, है ना। अगली बार आप लिख भी सकते हैं उनके जो उनकी कॉपी में या फिर उनका जो डायरी होता है उस पर आप लिख सकते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपस में मिलके टीचर से प्रिंसिपल से, तो बच्चों का थोड़ा सा बिहेवियर, क्योंकि बच्चे तो कभी पानी पीते नहीं हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो ऐसे कंडीशन में, और जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े से जो हैं, वैसे भी आजकल जो स्कूल्स हैं आप देखते होंगे कि ठंड के कपड़े अलग होते हैं यूनिफॉर्म, और गर्मी के वो उसी हिसाब से गर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं। तो और जैसे छतरी मैंने बताया, छाता या कोई कैप, ये सब आप देखें
0: जरूर। हाँ, सावधानी के तौर पर साथ में रखें। आगे बहुत सारे आपसे सवाल हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार जी,
0: स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
2: जैसे सफर में जाते हैं तो ये बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पानी की जगह में, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की मांग करते हैं ठंड में, वो गर्मी में, तो और वो जो पानी की जो बोतलें मिलते हैं उनसे प्यास बुझती नहीं है, तो क्या ये ठीक है कोल्ड ड्रिंक?
1: हाँ जी, अभी हम एक आधा घंटे से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, ये अवॉइड करना है। ये बिल्कुल सही नहीं होता है। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा नहीं सेवन करना है। अगर एक आध बार है, लेकिन ये अगर पूरे तरह से आपने पानी को ही रिप्लेस कर दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक से, पेप्सी से, फेंटा से, या इस तरह के जो अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको बीच बीच में नॉर्मल पानी भी पीना है, आपको छाछ भी पी सकते हैं, ठंडा ही पी सकते हैं, आप ORS भी ले सकते हैं बीच में। तो ये सब चीज़ आपको नींबू का पानी जैसे हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ लेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये पूरी तरह से अवॉइड करें।
0: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूज़िकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा।
1: जी।

0: तो श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हीट इमरजेंसीज पर है कि गर्मी से आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर हो गई है तो कैसे सावधान होकर उसका उपचार करें। डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहा जाता है कि 107 108 तक टेम्परेचर हो जाता है। क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है और वो आपको लगा है कि क्योरेबल रहा?
1: जी देखिए, इसमें 109 110 भी पहुंच जाता है। इतना हाई टेम्परेचर से क्या होता है, सारे बॉडी के सेल्स हैं डैमेज मोड में चले जाते हैं, सारे जो हीट की वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारे जो दिमाग में एक मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है जिसमें वो थर्मोस्टैट होता है हमारे पूरे बॉडी के हीट से रिलेटेड। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। जब पसीना आना बंद हो गया तो आपका टेम्परेचर बॉडी का एकदम से राइज होने लग जाता है। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर ही 109.4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक नौजवान जो कि स्लीप

0: पर क्लास में ट्रेन में एक पूरे 24 घंटे का सफ़र करके ऊपर वाली बर्थ पे सोता हुआ अकेला आया था, और जब दिल्ली में आया तो उसको उल्टियाँ होने लग गईं और वो गफलियत में चला गया। जब हमारे पास आया तो वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बेहोशी हालत में था, और हमें उसको यहाँ तक कि उसको मशीन पे डालना पड़ा, और तुरंत हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए टब में डाल के उसका आइस कोल्ड वाटर
1: जी
0: में टब में उसको गर्दन से नीचे नीचे उसको हम गर्दन ऊपर रखते हैं, और उसको हमने टेम्परेचर एकदम से कम किया, और वो 2 हफ्ते तक रहा हमारे पास। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा होके गया, चल के
1: जी
0: गया वापस।
1: तो मुझे लगता है कि जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा सा आशान्वित हो गए होंगे कि अगर ये समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह से ये माना जाए कि इस स्थिति में मेडिसिन सहायक हो सकती है?
0: देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं नहीं, बल्कि जबकि ये टेम्परेचर आपका 106, 7, 8, 9 जा रहा है, तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैरासीटामोल दे दें, तो ऐसा पैरासीटामोल देने से टेम्परेचर कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो गया है। थर्मोस्टेट जब तक काम करता रहता है, और आपको मान लो कोई पायरोजेंस से है ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हीट स्ट्रोक में पैरासीटामोल काम नहीं करता है, और कोई भी मेडिसिन्स उसको टेम्परेचर को काम नीचे लाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हवा और पानी का छिड़काव, और जहाँ हो सके हीट स्ट्रोक में तो सिर्फ वो भी काम नहीं करता है। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो अगर आप सिर्फ हवा कर रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो फील्ड में ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो भी काम करना मतलब वो टेम्परेचर कम करता है, नो डाउट, बट जितना जल्दी से हमें उसको टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर पाता है, उसमें बहुत समय लगता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है कि टब में उसको डाल के, जो एक आइस वाटर बाथ जो होता है, अगर आपके पास आइस नहीं भी है तो भी आप ठंडे पानी में, अगर जैसे नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर वाला पानी है, ये गर्म टंकी का पानी नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: तो ऐसे पानी में भी अगर आप डिप कर दें उसको, है ना, तो ये है कि भाई उसका जो नाक है मुंह है ऊपर रहना चाहिए, और उसको आप जैसे हॉस्पिटल में हम लोग का तो यही ट्रीटमेंट होता है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जैसे मान लो शिवरिंग होती है, मैंने बताया था कि मिडाजोलो में एक दवा होती है हम देते हैं, और जैसे अगर दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की हम दवा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो हम देते हैं
1: कंट्रोल किया जा
0: कंट्रोल के।
1: सके।
0: हाँ, तो
1: जी
0: इसका बस वही है कि आपको बचाव है, और ज़्यादा होने पे आप जैसे इसमें आईवी फ्रूट्स देते हैं हम लोग, या जो क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स सोडियम की कमी होती है और ये होता है, तो आईवी फ्रूट्स देते हैं। अगर शुगर कम है तो शुगर का हम उसका डेक्सट्रोज, हम शुगर का ड्रिंक वो देते हैं,
1: ट्रीटमेंट हाँ
0: ट्रीटमेंट
1: दिया
0: देते
1: जाता
0: हैं।
1: है। जी, हीट एग्जॉशन क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, हीट एग्जॉशन एक वो स्थिति है, जैसे इसमें जो थर्मोस्टेट है आपका, जो जैसे हीट स्ट्रोक में थर्मोस्टेट पूरा काम करना बंद कर देता है,
1: जी
0: यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ी आना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है, हो रही होती है, लेकिन आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गफलियत में की स्थिति में आप धीरे धीरे आप जाने लग गए हैं, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया है ना, लेकिन अभी भी आपको स्वेटिंग जारी है। स्वेटिंग हीट स्ट्रोक में बिल्कुल स्वेटिंग बंद हो जाता है ना, स्वेटिंग बंद हो जाएगा, और लेकिन हीट एग्जॉशन अभी जारी है, तो ये एक हीट स्ट्रोक से पहली वाली स्थिति है जहाँ पे आपको ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक के तरफ ले जाने वाली स्थिति में ये आप जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज करें हम लोग तो हीट स्ट्रोक पैदा नहीं होगी, और हम इसको अच्छा रिस्पॉन्स मतलब किसी को भी हम बचा सकते हैं।
1: जी, यानी समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं इस स्थिति में तो बचाया जा सकता है उस स्थिति को आने से जो कि बहुत ही भयावह हो सकती है। जैसा कि आपने
0: बिल्कुल
1: स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें डेथ तक हो जाती है, थोड़ा सा जागरूक कर दें
0: फिफ्टी टू
1: लोगों को।
0: सेवेंटी
1: जी
0: परसेंट मोर्टेलिटी है, यानी कि 100 में से 50 से 70 मरीज जो है डिस्पाइट
1: जान गंवा
0: एडिक्वेट
1: देते हैं।
0: ट्रीटमेंट, हाँ एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी, ये डाटा जो है वेस्टर्न का है, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसलिए इसको स्ट्रोक कहा गया है, क्योंकि जो ऐसे आप ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसकी भी मोर्टेलिटी काफ़ी होती है,
1: जी
0: जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक कहा गया है इसको।
1: जी

0: तो श्रोताओं, मैं समझ पा रही हूँ कि आप भी बहुत ही सचेत हो गए होंगे, क्योंकि बहुत हल्के में ना लें कि गर्मी का मौसम है, आप किसी तरह से भी निकल जाएं, आपको काम है, लेकिन आपको निकलना कैसे है ये डॉक्टर साहब ने आज आपको जागरूक किया है कि आपको किस स्थिति में निकलना है, क्या प्रिकॉशन लेके निकलना है। जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बड़े जागरूक रहना है। डॉक्टर साहब, और क्या कहना चाहेंगे आप?
1: एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि
0: अच्छा
1: आप ना जैसे रेडियो सुनते रहे, रेडियो पे जानकारी मिलते रहती है, हीट हीट वेव कब घोषणा हुई है,
0: जी
1: या न्यूज़पेपर में ये जान, या सोशल मीडिया पे भी आजकल आ जाता है ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, है ना, इस तरह से। जैसे अभी आज सुबह ही मैं देख रहा था कि राजस्थान में अलर्ट है, तो इस तरह की जो अलर्ट आपने क्षेत्रीय अलर्ट है ना, उसको आप वो कर सकते हैं। सचेत ऐप है वो, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, जो सचेत ऐप है,
0: जी
1: वो भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आपको मौसम की जानकारी या कोई भी वार्निंग होता है तो वो आपको मिलता रहता है वहाँ से।
0: जी तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, और जीवन में इसको अपना लीजिए, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती हैं, आपको हर साल हम सचेत भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाह मत होइए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत गौर से सुना होगा और इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की हीट इमरजेंसीज पर। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब आपसे बस इतना कहूँगी कि अब दीजिए इजाज़त, अनुराधा को नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

प्रोग्राम चल रहा है जी, हेलो जलंधर, इंजॉय तो कर रहे अपनी दोस्त शाहिन दे नाल। अगले साडे दोस्त साडे नाल कॉल ते जड़ गए नहीं, करदे आ उन्हां नाल गलबात ते पुछदे आ उन्हां तों सवाल। जिवें जदों आपां स्कूल दे विच हुंदे सी या फिर आपां कॉलेज दे विच जदों पढ़दे आ, जे कोई भी इदां दा एग्जाम हैगा जदों आपां टाइम आंदा है ते बहुत ज़्यादा एक एनजाइटी हुंदी है ना सानू, मैनूं लगदा नहीं

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। FM बैंड 102.7 MHz ते प्रोग्राम सुन रहे युववाणी सारे दोस्तां नूं स्वागत करदे हां इस प्रोग्राम दे विच। ते अज दा इह प्रोग्राम युववाणी लैके हाजिर ने तुहाडे दो दोस्त, यानी कि मैं तुहाडा दोस्त RJ शिक्षित ते मेरे नाल ने
1: RJ प्रिया।
0: ते दोस्तों, असीं उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे तंदरुस्त होवोंगे ते नाल ही इस प्रोग्राम, यानी कि तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी नूं सुनण दे लई काफ़ी ज़्यादा बेताब होवोंगे।
1: जी बिल्कुल शिक्षित, मैनू लगता है अज ज़्यादा ही कुछ एक्साइटमेंट होने वाली है साढ़े जेडे लिसनर्स हैं उन्होंने, क्योंकि अज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अज कुछ खास सैलीब्रेशनस भी है। तो सब तो पहली सैलीब्रेशन जी असं अज कर जा रहे हैं, वो साढ़े अपने प्यारे पौद्या लिए कर जा रहे हैं, क्योंकि अज इंटरनेशनल प्लांट हैल्थ डे है।
0: सो दोस्तों, जेकर अज के दिन की गल करिए साडा इस दिन नूं मनाने दे लई एक खास मकसद है। खास मकसद दोस्तों इस तरह है कि सानू पता है कि साडे पूरे जिंदगी का घट्टो घट 98% ऑक्सीजन, यानी कि जिहड़ी हवा असी अपने अंदर लैने आ, ते 80% जिहड़ा खाना है वह पौद्यां तो आंदा है, पेड़ां तो आंदा है। ते अज दे दिन इन्हां पेड़ां दा, इन्हां पौद्यां दा शुक्रिया अदा करना जरूर बनता है।
1: बिल्कुल, तो मैं लगता है तुम सारे हूँ यह सोच रहे होवोंगे कि असं पौद्या की हैल्थ बारे क्यों गल कर रहे हैं। तो तुम्हें सारियां नूं पता होएगा कि वधदी ग्लोबल वार्मिंग करके ते अज ते प्रदूषण करके भी जिहड़े पौधे वो ज़्यादा तो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उन्होंने कई तरह दी नवीं बीमारियां ते कीड़े लग रहे हैं। तो उन्होंने दी केयर करना साड़ी अपनी सेहत लई बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है।
0: तो दोस्तों, जेकर अज दे दिन दे असी प्रिया गल कर रहे हैं तो मैनू लगता है अज दे दिन दे बारे होर जानकारी देना थानू लाजमी हो जाता है। दोस्तों, जेकर अज दे दिन दे मनाने दे ढंग की गल करिए प्रिया, इस दिन वख-वख संस्थावां वख-वख ईवेंट्स ऑर्गेनाइज करदे ने, जिस दे विच दोस्तों दस्या जांदा कि किस तरह असी अपनी बायोडाइवर्सिटी नूं, पेड़ां नूं, पौद्यां नूं, नाल ही नाल जिहड़े उहनां दे विच पनपदे जीव ने उहनां नूं किस तरह बचा सकदे आ। ते प्रिया, जेकर इस साल दी थीम दी गल करिए दोस्तों, इस साल दी थीम इह है कि देखते हैं असी अक्सर कि जिहड़ी साडी फसलां ने या फिर छोटे पेड़ पौधे ने अक्सर उन्हां नूं कीड़े लग जांदे ने, या फिर कैमिकल्स फर्टिलाइजर्स ज़्यादा वर्तन दे नाल नाल वो सड़ जांदे ने या फिर गल जांदे ने। तां इस साल साडी कोशिश यह रहेगी इस थीम दे नाल कि असी उन्हां पेड़ां नूं, असी उन्हां पौद्यां नूं कीड़ां तों भी बचा सकीए, नाल ही नाल कैमिकल्स फर्टिलाइजर्स अते पेस्टिसाइड्स दी दुरवरतों तों भी बचा सकीए।
1: बिल्कुल, बाबा गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। तो इस दे नाल ही सानू यह सोचना चाहिदा है कि साडी जिहड़ी धरती है वो साडी माँ है, तो इहदा शिंगार जिहड़े ने वो साडे पौधे है, तो इस लई सानू सारियां नू उहनां नू संभाल के रखना चाहिदा है, तो इहो जिहियां चीज़ां नहीं करनियां चाहीदियां जिन्हां दे नाल उहनां नू बीमारियां लगन।

जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। कई बार जिंदगी च कुछ खोना पैंदा है, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई सपना, कोई गल, जो खो गया उसका गम नहीं मनाना चाहिए। कई बार असी अपनी खुशी किसी होर नाल तोलदे हां, पर हर किसी की जिंदगी अपनी खास है, अपनी एक कहानी है। अपनी कहानी नूं किसी होर दी कहानी दे नाल असी कंपेयर नहीं कर सकते। उम्मीद करती हाँ कि जिहड़ी जो भी साडे कोल हैगा साडे लई उह सारियां दे लई उह लाजवाब होना चाहिए। जो नहीं है मन्निया एक ख्वाब है, पर उस ख्वाब नूं किद्दां आपां पूरा करना है उह साडे सारियां दे हत्थां दे विच है। असीं कम करांगे क्योंकि 24 आवर सारियां नूं मिलदे ने। सारियां कोल दो हत्थ है, एक दिमाग हैगा सोचण वास्ते, दो अखां हैगियां देखण वास्ते, दो कन्न हैगे सुनन वास्ते। ते क्यों ना अपने जिहड़े ख्वाब ने उहनां नूं पूरा करन वास्ते असीं आप ही मेहनत करिए, ना कि दूजियां दे नाल अपनी जिहड़ी जिंदगी है, अपनी कहानी है उसनूं कंपेयर करिए।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया पलां च तेरे वीरां तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरो ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

व्हाट्सएप दे उत्ते फरमाइश आई है गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया प्रमिला ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु शिवम कहते हैं कि नमस्कार जी फिल्म राजकुमार का गीत तूने पुकारा हम चले आए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है प्ले कर देवांगे फिर उस तो बाद अगली फरमाइश आई है कि दिल चाहता है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी कोई भी गीत सुना दीजिए ठीक है जी कोई भी गीत सुना देंगे फिर उस तो बाद साढ़े को अगला नाम आया है कि राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा ये भी कहते कि गीत सुना दो फिर उस तो बाद अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान कुलविंदर कौर हरविंदर कौर मान कहते कि कोई भी फिल्मी गीत सुना दो ठीक है जी सुना देंगे उस तो बाद अगे लिखे है कि पिंड हीरावाली जिला फजिलका तो सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा तो कहते कि कोई भी तुसी गीत सुना दो ठीक है जी सुना देंगे लेकिन हुण प्ले कर जा रहे हैं आपां मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ दे विच तुमने पुकारा और हम चले आए

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली फरमाइश आई है, फिल्म पराया धन गीत का नाम है आज उनसे पहली मुलाकात। जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा इन्होंने ये फरमाइश की थी। सो प्ले करते हैं इन्हों की फरमाइश का एक गीत।

बरेलवी साहब लिखते हैं कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का।

जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नागदान पे रोना आ गया। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद में भी सोना चाहता हूँ मैं।

दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है।

कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वहीं पे गाने चेहरे हैं जहाँ जाएं जिधर मिल जाते हैं।